0: পশ্চিমবঙ্গের নদী ও সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যারা মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাঁদের জন্য কোনো সতর্কবার্তা নেই। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের পরবর্তী ঘোষণা কিছুক্ষণের মধ্যেই। সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে একটু পরেই দিল্লি থেকে সংবাদ।
1: কার আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে আকর্ষতা সিং। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: The discussions also
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: Can enter the Venezuelan market successfully.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का

0: एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today. He will dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat across the road, power and industrial sectors. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary healthcare across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution rates, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. These projects span various sectors including healthcare, civil aviation, tourism, infrastructure, connectivity and public welfare. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said Ministry of Ayush has launched a Yoga 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthy lifestyle across communities. The Prime Minister urged athletes from across the world to help spread awareness about yoga beyond the championship.

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने

की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोनताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन

0: सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों

0: के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर

0: लिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमेरिका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे, लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
2: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा, लेकर हिंदी कार्यक्रम रसधारा। आज विश्व पर्यावरण दिवस। जी हाँ दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाव प्रधान गीतों और बातों के कार्यक्रम रसधारा में आज हम बात करेंगे वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की। किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों के साथ।

9:20 कार्यक्रम रसधारा में आज हम एक ऐसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर पूरी तरह से हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, पर्यावरण संरक्षण। जी हाँ, हम सब पर्यावरण का हिस्सा हैं और अंततः हमें इसी पर्यावरण का हिस्सा बन जाना है। गांधी जी ने कहा था, हम पर्यावरण के उपभोक्ता नहीं, संरक्षक हैं। लेकिन समय के साथ साथ कहीं ना कहीं संरक्षण के बजाय आधुनिकता की दौड़ में, आधुनिकता की होड़ में आगे बढ़ने के लिए हम ये भूल से गए कि हम पर्यावरण को किस स्तर तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी देर नहीं हुई है, अगर हम प्रण कर लें, ठान लें कि हम सब वृक्षारोपण करेंगे, तो सिर्फ ये एक ऐसा कदम है जिससे हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काफी कुछ कर सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पर।

पंछी सुर में गाते रहें। रात्रि में जब हम आसमान की ओर निहारें तो हमें टिमटिमाते हुए तारे नजर आएं। गर्मी का मौसम हमें जलाए नहीं, ठंड का मौसम हमें कपाए नहीं, यानी कि अति ना हो। इसके लिए जरूरी है कि हम पर्यावरण संरक्षण की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं और वृक्ष लगाएं, क्योंकि प्रकृति के अधिक दोहन के परिणाम स्वरूप आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संकट, जैव विविधता का ह्रास और प्राकृतिक आपदाओं जैसी गंभीर समस्याएं हमारे सामने आ चुकी हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण केवल विकल्प नहीं बल्कि हमारे

तरफ से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ मौजूद प्रकृति और मानव निर्मित तत्वों का समूह हम कह सकते हैं हमारा पर्यावरण है। इसमें वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु, नदियां, पहाड़, महासागर और मानव सभी शामिल हैं। तो करना चाहते हैं अगर हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा, खुद की रक्षा, तो हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा और वृक्षारोपण से जुड़ जाना होगा।

पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण। वृक्ष प्रकृति के सबसे बड़े उपहारों में से एक हैं, क्योंकि वृक्ष देते हैं हमें ऑक्सीजन, वर्षा में होते हैं सहायक, जैव विविधता के संरक्षण हैं। किस तरह? बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस गीत के उस पार। कार्यक्रम रसधारा, जिसे सुन रहे हैं आप आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल पर, पूजा है आपके साथ। 9:41 और 40 सेकंड हो चुके हैं।

जब आप करते हैं गुजारिश मेघा से कि पानी बरसाओ, शायद आप सुन नहीं पाते मेघ की आवाज। वो आपसे पलट कर कहता है, तुम वृक्ष लगाओ। जिस तरह से तुमने वृक्षों की कटाई शुरू कर दी है, बाढ़ और सूखे की घटनाएं तो बढ़ेंगी, मिट्टी का कटाव तो होगा ही, वन्य जीवों का आवास नष्ट होगा, तो जैव विविधता में बाधा तो उत्पन्न होगी ही। तो पर्यावरण संतुलन को तुम बिगाड़ रहे हो। अगर इसे बनाए रखना चाहते हो तो अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाओ। क्योंकि ये जो वृक्ष हैं, ये हमें देते हैं प्राणवायु। एक स्वस्थ वृक्ष प्रतिदिन इतनी ऑक्सीजन देता है कि कई लोगों की सांसों की आवश्यकता पूरी हो सके। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस तरह से वृक्ष ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं। वृक्ष होते हैं वर्षा में सहायक। जहां अधिक वन वहां वर्षा भी अधिक। वृक्ष करते हैं मिट्टी का संरक्षण, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जड़ों को बांध कर रखते हैं। और पहले ही कहा गया कि वृक्ष जो हैं वो हजारों पंछी, कीट और जीव जंतुओं का निवास स्थान होते हैं। उन्हीं पर आश्रित होता है कई सारे जीव जंतुओं का जीवन। तो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना चाहते हैं, अगर हम वातावरण को बचाए रखना चाहते हैं, अगर हम सही अर्थों में विश्व

पर्यावरण दिवस मनाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, अपने अपने स्तर पर लगाएं, लेकिन लगाएं।

दोस्तों, लम्हा लम्हा ये जिंदगी गुजर रही है, हर आने वाला पल कल बन जाना है, तो फिर हम किसी भी कल का इंतजार क्यों करें? क्यों ना हम आज में जिएं और आज अभी सब साथ मिलकर संकल्प लें, मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा, मैं जल जंगल और जमीन का सम्मान करूंगा।

मैं कम से कम एक पौधा लगाऊंगा और उसकी देखभाल करूंगा। मैं स्वच्छ और हरित भारत के निर्माण में, मैं स्वच्छ और हरित विश्व के निर्माण में अपना योगदान दूंगा। आज ही लें संकल्प और एक छोटा ही सही पौधा जरूर लगाएं, और सिर्फ लगाएं नहीं, उसकी देखभाल करें। अपने छोटे छोटे बच्चों में पर्यावरण के प्रति सजगता का विस्तार करें, विकास करें, तभी हम आने वाले कल को बचा सकेंगे, पर्यावरण को बचा सकेंगे। इसी संदेश के साथ आज का कार्यक्रम रसधारा बस यहीं तक। कार्यक्रम रसधारा में हम आज बात कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण की। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम रसधारा जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता के संचयता चैनल पर सुनते रहें, साथ बने रहें। चलते चलते आपके लिए आवाज कुमार शानू की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक अब से कुछ देर में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में ये घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को विश्वसनीय साझेदार मानता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की

297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता, जिस पर आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। इस स्टूडियो की खड़ी में वक्त हुआ है 10:16 यानी कि इशारा है प्रोग्राम की पहली पेशकश आयना का। और आपको बता दूं कि आज आपके साथ है आपकी मेज़बान सूफिया शीरिन। आप सबों को सूफिया का पुरखलूस आदाब। आना शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि आप ये प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एयर ऐप के ज़रिए भी समाअत फरमा सकते हैं, और अगर चाहें तो बराह रास्त संचेता चैनल कोलकाता भी टाइप करें और कभी भी कहीं भी हमारे प्रोग्रामों से लुत्फ़ अंदोज़ हों।

आप सुन रहे थे फिल्म गुरु का नगमा श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज में शायरी गुलजार की। अब चलिए बातें करें कि हुकूमत हिंद अकलियतों के लिए क्या क्या कर रही है, क्या क्या कर चुकी है। जी हाँ, मेरा इशारा है वज़ीर आज़म का 15 नकाते प्रोग्राम की जानेब। आज मैं मंजरनामा में बात करूंगी वज़ीर आज़म का 15 नकाते प्रोग्राम यानी 15 पॉइंट्स प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज़। भारत एक कसीर मजहबी कसीर सकाफती और जमहूरी मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मजाहब और बरादरियों के लोग बाहमी हमांगी के साथ रहते हैं। मुल्क की तरक्की में अकलियतों का भी अहम किरदार है। अकलियती बरादरियों की तालीमी समाजी इकतसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हिंद ने वज़ीर आज़म का 15 नक्काती प्रोग्राम बराए अकलियती यानी प्राइम मिनिस्टर्स न्यू 15 पॉइंट्स प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ नाफिज किया है। ये प्रोग्राम पहली मरतबा 1983 ईस्वी में मुतारफ कराया गया था और बाद में 2006 में इसे मजीद मौसर और जामी शक्ल दी गई। इसका मकसद अकलियतों को तरक्की की यकसा मौाक़े फराहम करना और इन्हें कौमी धारे में मजबूती से शामिल करना है। भारत में दर्ज ज़ैल मजहबी भारत में बरादरियों की अकलियती का दर्जा रखते हासिल करते हैं हासिल हैं जिनको उनके वो हैं मुसलमान ईसाई सिख बुद्ध पारसी जैन। अकलियतों की तालीमी तरक्की को फ़रोग देना रोज़गार और माशी मौाक़े में इजाफा करना सरकारी मुलाजमतों में नुमाइंदगी बेहतर बनाना बुनियादी सहूलियात तक रसाई फ्राहम करना फ़िरका वाराना हमहंगी और कौमी यकजहती को मजबूत करना ये सारे जो है इस 15 नकाती प्रोग्राम की मकासद हैं। आइए हम थोड़ी सी बात कर लें इन 15 पॉइंट्स की तफसीलात पर। पहला है आंगनवाड़ी मराकज़ का क़याम। अकलियती आबादी वाले इलाकों में आंगनवाड़ी मराकज़ कायम किए जाते हैं ताकि बच्चों और ख़वातीन को ग़िज़ाइयत और इब्तदाई तालीम फराहम की जा सके। इस 15 नकात में एक दूसरा नुक्ता है स्कूल तालीम। स्कूली तालीम में बेहतरी अकलियती इलाके में नए स्कूलों का क़याम अजाफी क्लासेस रूम क्लासरूम्स और तालीमी सहूलियात फ्राहम की जाती हैं। इसका तीसरा पॉइंट है उर्दू तालीम का फ़रोग। उर्दू बोलने वाले तलबा के लिए उर्दू असाज़ा की तकरीरी और उर्दू तालीम को फ़रोग दिया जाता है। अकलियती तलबा के लिए बड़ी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक और मेट्रिकम मेटर स्कॉलरशिप जैसी सहूलियत भी मेटर का मीन्स

0: पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ है फिल्म जान की कसम का नगमा। और अब चलिए हम लोग बातें करते हैं थोड़ी साइंस की। जी हाँ, ये बरसात जो हो रही है ना, इसके पीछे भी साइंस है, तेज़ धूप के पीछे भी साइंस है, काली घटाओं के पीछे भी साइंस है, ये गर्मी में शदीद गर्मी में पसीने का निकलने के पीछे भी साइंस है, और सर्दी जब लगे तो ठंड का लगना भी साइंस है। यानी मौसम की तमाम तब्दीलियों के पीछे साइंस ही काम कर रही है। जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो यकीनन दो चार दिनों के बाद बारिश ज़रूर हो जाती है, इसके पीछे भी साइंस ही है। तो आइए चलिए हम साइंस के अफादियत का ख्याल करते हुए आज हम लोग सुनते हैं साइंस खेल खेल में। साइंस खेल खेल में आज हमारे मेहमान हैं मुश्ताक अहमद, और उनसे बात कर रहे हैं हमारे अनाउंसर। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ये प्रोग्राम रिपीट समाप्त फरमा रहे हैं, यानी कि आप मुकर्रर समाप्त फरमा रहे हैं, ये प्रोग्राम आप पहले भी समाप्त फरमा चुके हैं। तो पेश खिदमत है साइंस खेल खेल में मुश्ताक अहमद, जो बात कर रहे हैं लाइट पर यानी रोशनी पर।
1: हफ्त रोजा प्रोग्राम साइंस खेल खेल में आज हम बात करेंगे कि कैसे साइंस को खेल तजुर्बे और दिलचस्प सरगर्मियों के जरिए न सिर्फ आसान बल्कि दिलकश बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज हमारे साथ आकाशवाणी कोलकाता के स्टूडियो में मौजूद हैं फिजिकल साइंस के माहिर उस्ताद

0: जनाब मुश्ताक अहमद साहब, जो एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं और साथ ही वो अपने बच्चों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन चीजें सिखाते हैं, तजुर्बों के जरिया, रोजमर्रा के कामों के जरिया। सर, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। सबसे पहला सवाल ये है कि आज आप हमारे सामीन को क्या समझाएंगे, किस मौजू पर बात करेंगे?
1: आज जो है हम लोग जो है एक बहुत ही दिलचस्प जो है साइंस का टॉपिक है वो रोशनी, लाइट है। रोशनी हमारे मौजूदा जो जिंदगी है उसका बेसिक नीड है, और लाइट के बगैर जो है हम लोग जो है आज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लाइट क्या है ये सबसे पहले समझना, कि बच्चों को हम लोग समझाएं कि रोशनी क्या है। रोशनी एक तरह की एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है। ये सबसे बेसिक है कि रोशनी के जरिए हम किसी चीज को देख पाते हैं, और इस रोशनी में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कुदरती तौर पर उनमें होती है, जिसको हम लोग फेनोमेना बोलते हैं, मजहर बोलते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, इंटरफेरेंस होता है। इस तरह के बहुत सारे दिलचस्प वाकयात होते रहते हैं रोशनी में, जो हमारी मौजूदा जो जिंदगी है उस पर असरअंदाज होता है। रोशनी जो है सबसे बड़ा जरिया है हमारे लिए, वो है सूरज
0: जी।
1: सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है, हम लोग जानते हैं। अगर ये सूरज ना हो तो फिर ये रोशनी भी हम तक ना पहुंच पाए। इसके अलावा मौजूदा दौर में हम लोग देखते हैं कि बल्ब का ऐजाद ऐसा ऐजाद है जिसमें आप रातों को भी दिन में तब्दील कर सकते हैं, है ना। दिन में रोशनी सूरज से मिलती है, और रातों में क्या है ये बल्ब उजाले करते हैं
0: जी।
1: ठीक है, ये बल्ब उजाले जो करते हैं इसमें हम लोग रोजमर्रा अपने डेली लाइफ में बहुत सारे बल्ब भी देखते हैं। आज के दौरे जदीद में सबसे अहम लाइट अभी हमारे साथ जो है एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। बच्चे इससे वाकफियत रखते होंगे, बहुत सारे बच्चे अपने इतराफ में देख रहे हैं कि हम लोग जो है इन एलईडी लाइट से घिरे हुए है ना। ये लाइट इमिटिंग डायोड ये रोशनी पैदा करने वाले छोटे छोटे डायोड है, दिन रात को उजालों में बदल देते हैं। ये रोशनी जो है इसके अंदर एक खसूसियत है, वो ये है कि रोशनी हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन में सफर करती
0: जी।
1: तो उसको एक तजर्बा के जरिए भी हम समझ सकते हैं कि रोशनी एक स्ट्रेट लाइन में सफर कर रही तो कैसे करती, कि बच्चे जो है अगर खुद से चाहे तो इस तजर्बे को घर में भी कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तजर्बा है, इसके लिए दो कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी और एक मोमबत्ती चाहिए, है ना, कैंडल। इस कैंडल को एक जगह कहीं मेज पर रख दे और एक कार्डबोर्ड में सुराख कर लें, और एक कार्डबोर्ड में बगैर सुराख किए उसमें सादा सफेद कागज लगा दें। अब वो कागज लगाकर एक जगह नस्ब कर दें, और जिसमें सुराख किया हुआ कार्डबोर्ड है उसको जो कैंडल है पहले कैंडल को जलाएं। कैंडल को जलाने के बाद उसके ठीक समांतर सीध में उसको सीधा हम रखें, उस सुराख से जो रोशनी निकलेगी उसकी स्वाएं जो है, उसकी रेज जो है उस कार्डबोर्ड जो सफेद जिस पर स्क्रीन की तरह वो काम करेगा उस पर पड़ेंगी। अब ये कार्डबोर्ड का अगर हम उलट के रख दें और रोशनी ना आने दें तो फिर देखेंगे कि हमारा ये जो कार्डबोर्ड जो है इस पर रोशनी की स्वाएं नहीं पड़ती, जिससे ये साबित होता है कि रोशनी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में सफर करती। स्ट्रेट लाइन में अगर ये सफर ना करती तो फिर हम तक ये रोशनी की जो है सूरज से जो मिलती है उसमें बहुत सारे और भी मजहर होते हैं, जैसे रेडिएशन के थ्रू हमारे जो घर में देखते हैं हम छतों पर क्या है कि अपने कपड़े फैला दिए और ये रोशनी आकर हमें वो कपड़े सुखा कर चली जाती है। तो कभी तो सोचा होगा कि ये कौन सी चीज है जो ये काम कर रही है, ये तो रोशनी है जो रेडिएशन के थ्रू हमारे यहाँ पहुँचती है। ये रेडिएशन भी क्या है कि रोशनी का एक बहुत ही अहम फेनोमेना है। तो इस तरीके से हम तजर्बात के जरिए से हम समझ सकते हैं बहुत सारे मजहर कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोशनी का एक और फेनोमेना है जिसको हम लोग इनकास या रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपना रिफ्लेक्शन, अपना अक्स देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं, है ना। ये जो इमेज जो आप देख रहे हैं ये किसी आईने में आप खड़े होंगे तो देखिएगा कि आपके हूबहू आईना पर जितना आपका अक्स बना है, जितना आपका साइज है, उसी हिसाब से आपको वो आईना दिखा रहा है। लेकिन हम लोग जो है साइंस खेल खेल में, जब हम साइंस सिटी वगैरह में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बहुत सारे जो है मैजिक मिरर है। वो मैजिक मिरर क्या है कि उस मैजिक मिरर में एक जगह ऐसा मिरर भी है जहां बच्चे खड़े होते हैं तो अपने आप को देख रहे हैं।

0: कि हम तो छोटा हो गए, मेरा साइज छोटा हो गया
1: जी। बिल्कुल, बच्चे बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं इन चीजों में
0: जी जी,
1: जहाँ खासतौर पे मैजिक मिरर
0: जी,
1: और लाइट, तो ये बच्चे समझते नहीं है कि ये लाइट
0: क्या
1: काम कर रहा है या क्या चीज है, बस उसे उन्हें क्या है दिलचस्पी ले रहे हैं, बस शक्ल बदल जा रही है तो उन्हें मजा आता है। तो ये किस तरह से होता है आप जरा से बताएं
0: जी। ये जो फेनोमेना है ये लाइट का बहुत ही अहम फेनोमेना जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं और रोशनी का इनकास है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब है, आप डिफरेंट तरह के बहुत सारे मिरर हैं, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो आईने के सामने खड़े होते हैं वो प्लेन मिरर है, और जो मैजिक मिरर वगैरह जो होता है उसमें हर तरह के मिरर इस्तेमाल होते हैं जिसमें कॉनकेव भी है कॉनवेक्स भी है। तो हमारे बच्चे जो इसीलिए दिलचस्पी लेते हैं कि हम जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो हमारा जो अक्स बनेगा, इमेज बनेगा, साधारण सा जो आपका हाइट है, जो आपके कदोकामत है, उसके हिसाब से आपके इमेज बनेंगे। और जब हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स के सामने खड़े होते हैं तो यहाँ से मैजिक शुरू होता है कि बच्चों को अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने खड़ा कर दे तो वो उनका सर नीचे और पैर ऊपर हो जाएगा
1: जी,
0: और धीरे धीरे धीरे धीरे और उनको मिरर से करीब किया जाए करीब किया जाए तो वही कॉनकेव मिरर में अब उनके इमेजेस जो हैं और छोटे होते जाएंगे छोटे हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि इमेज फिर उल्टा होकर सीधा हो जाएगा। ये कॉनकेव मिरर की खसूसियत है कि भाई कॉनकेव मिरर में होता क्या है कि एक पोजीशन ऐसा होता है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप दूर खड़े हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी तो आपका जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, जिससे बच्चों का क्या होता है कि सर नीचे और पैर ऊपर ऊपर रह जाता, तो बच्चे उसको बड़ा मुसर्रत के साथ और खुश होकर देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर ये धीरे धीरे धीरे धीरे जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आते हैं उस मिरर का तो उनका अक्ष का साइज बिल्कुल बराबर हो जाता है लेकिन उल्टा
1: उल्टा हो जाता है,
0: उल्टा होगा मैंने सर नीचे और पैर ऊपर। और फिर धीरे धीरे जब वो और करीब होते जाएंगे मिरर से तो ऐसा ही अमल होते रहता है। एक वक्त ऐसा आता है जब उनका अक्ष नजर ही नहीं आएगा उनको, वो होता है जब उनका एक फोकस होता है जगह कॉनकेव मिरर का, वो फोकस पर जैसे ही वो आ जाएंगे तो उनको उनका अपना अक्ष नजर नहीं आएगा गर्चे वो मिरर के सामने खड़े हैं। अब वो उनका अक्ष बनेगा इन्फिनिटी पर जिसकी वजह से वो उनको नजर नहीं आएगा। ये मिरर मैजिक ये जो है कॉनकेव मिरर की बड़ी अहम खासियत है। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर का हम लोग जो देखते हैं, आप कभी डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो देखिएगा डेंटिस्ट जो मिरर इस्तेमाल करते हैं दांतों को देखने के लिए वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कॉनकेव मिरर है आपका डेंटिस्ट के लिए क्या होता है कि वो जब फोकस और पोल के दरमियान अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज लार्ज बनता है। तो ये बच्चे को अगर हम फोकस और पोल के दरमियान खड़ा कर देंगे तो वही बच्चे अपना अक्ष देखेंगे
1: तो बड़ा,
0: बड़ा हो गया
1: बड़ा तो दिखेंगे,
0: उनको बड़ा नजर आएगा है ना
1: जी, तो साइज बड़ा दिखेगा,
0: साइज बड़ा दिखेगा। तो ये डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर। इसी तरह जो है एक कॉन्वेक्स मिरर है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला है कि भाई गाड़ियों में जो है जो रियर व्यू के लिए मिरर इस्तेमाल करते हैं जितने भी व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो आपका किसी तरह का भी व्हीकल हो, बाइक हो, बच्चे बस पर हो या किसी तरह का, तो उसमें जो मिरर इस्तेमाल होता है वो मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या है खसूसियत कि इसमें जब भी इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा, चाहे वो आप जितने करीब हों चाहे दूर हो
1: जी,
0: और इमेज का साइज जो होगा हमेशा छोटा बनेगा, कभी बड़ा नहीं बन सकता। ये इसकी
1: खासियत
0: है कि कॉनकेव मिरर में क्या है कि आपको छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा सीधा बनेगा और
1: छोटा
0: बनेगा। और जो इमेज बनते हैं तो इमेज भी दो तरह का होता है, एक रियल इमेज एक वर्चुअल इमेज। तो इस कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा। तो इस तरह से बच्चों को हम लाइट के थ्रू बता सकते हैं कि जो हमारा बच्चा जो है किस तरीके से ये लाइट में ये फेनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े तो इसमें मिरर मैजिक वगैरह को अच्छे से समझ पाए। ठीक है,
1: तो ये कोशिश रहेगी कि बच्चों को और भी मज़ेदार चीज़ें आप सिखाएं। लाइट के ज़रिए आपने बहुत कुछ बेहतरीन बातें बताई जो बच्चों को समझ में आया होगा और हमारे सामीन भी समझे होंगे जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं। तो एक चीज़ जैसे कार के बारे में आपने समझाया और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में समझाया, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है और समझ में आया होगा सामीन।

झील पर जैसे कोई काली घटा छा जाए, झील पर जैसे कोई काली घटा छा जाए, नीली आंखों पे घनी पलकों को डाले रखना। जी हाँ, अब पलकों की घटाओं से बात पहुंच गई है पट-पट से जो काली घटा टकराती है उस तक, क्योंकि अचानक से सुबह मौसम बदल गया है। शदीद गर्मी जो लग रही थी ना कल तक, आपको सुबह उठकर देखिए तो देखा होगा अपने जो नज़ारा, तो क्या कहूँ, मैंने दिल से लेकर जो ना रूह तक एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ है। तो इसीलिए भाई मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है, इसलिए मैं तो आपको भाई ऐसे ही गाने सुनाऊँगी जिसमें बस मेघा हो, काली घटा हो, बस यही हो।

आप सुन रहे थे आशा भोसले और विनोद बाल विनोद राठौर की आवाज़ में फिल्म चांदनी का नामा। जी हाँ बिल्कुल, पर्वत से काली घटा टकरा गई है, दिल लेने की रुत आ गई है और वक्त भी हो चला है 10:56, यानी कि ये इशारा है कि अब सूफिया शीरी आपसे इजाज़त ले लेगी बहुत ही जल्द। लेकिन जाते जाते एक नगमा आपके समातों की नज़र, उससे पहले ये एक शेर मुलाजा फरमाए। काले काले मेघा बरसे कल कुल धरती मुस्काए, सोंधी माटी की खुशबू से सारा जग भर जाए। जी हाँ, बस ये मेघा बरसती रहे और हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क में मोहब्बत अमन और शांति की भी मेघा बरसती रहे, हमारा मुल्क इसी तरह प्यार और मोहब्बत से सरसब्ज़ो शादाब रहे। आपकी समातों की नज़र लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में फिल्म प्यासा सावन का नगमा, शायरी संतोष आनंद की, जिसे मौसीकी से संजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप सुनते रहिए प्यासा सावन का नगमा और अपनी मेजबान सूफिया शेरी को इजाजत दीजिए, लेकिन सूफिया शेरी आपको तन्हा नहीं छोड़े जा रही हैं, आपका साथ निभाएंगी शानी चैटर्जी और मैं आपको कहती चलूं कि मैं तनु फिर मिलांगी। फिलहाल सुनते रहिए प्यासा सावन का नगमा।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।

हर सुबह दिन के 12 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। सुरभि का पहला पायदान चर्चा है के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है यह दिन। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं, वनस्पतियों और आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जैव विविधता के नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के बीच यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और सामूहिक कार्यवाही का वैश्विक अभियान बन चुका है। वर्ष 1972 में शुरुआत हुई थी इस दिन की। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया और तब से यह दिन विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े जन जागरूकता अभियानों में से एक बन गया है। इस दिन के मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को यह समझाना कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों का कार्य नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, उपजाऊ भूमि, स्वस्थ वन और संतुलित जलवायु मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो विकास भी टिकाऊ नहीं रह पाएगा। इसलिए यह दिन पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाधान के लिए लोगों को प्रेरित करने का अवसर प्रदान करता है। बात करें अगर वर्ष 2026 की, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का वैश्विक विषय है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही। इस वर्ष का संदेश है कि पृथ्वी हमें जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दे रही है। अब केवल चर्चा नहीं, ठोस कार्यवाही की आवश्यकता है। विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक मेजबानी अजरबैजान द्वारा की जा रही है। मुख्य आयोजन उसकी राजधानी बाकू में होगा। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत घर से होती है। आम नागरिक अगर अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर ले तो हम पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी हो जाएंगे। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पानी और बिजली की बचत करें, सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने को बढ़ावा दें, कचरे का पृथक्करण और पुनर्चक्रण करें, स्थानीय जल स्रोतों, पार्कों और हरित क्षेत्रों की रक्षा करें, पर्यावरण संबंधी अभियानों में भाग लें। जब करोड़ों लोग छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो उसका प्रभाव बेहद बड़ा हो जाएगा। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। सरकारें पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून, नीतियां और योजनाएं बनाती हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न मंत्रालय और विभाग कार्यरत हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल है वन संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा प्रदूषण की निगरानी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, जल संरक्षण की योजनाएं, जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा और जन जागरूकता अभियान। सरकार समय समय पर स्वच्छता अभियान, नदी संरक्षण कार्यक्रम और हरित विकास योजनाएं भी चलाती है। गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये गैर सरकारी संस्थाएं जागरूकता अभियान चलाती हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करती हैं, प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाती हैं, स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण देने का भी कार्य करती हैं और पर्यावरणीय मुद्दों पर शोध और जनहित याचिकाएं भी दायर करती हैं। बात करें आज के दिन को कैसे मनाया जाता है, तो विश्व भर

पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। भारत में विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे कि स्वच्छता अभियान, पर्यावरण रैलियां, वृक्षारोपण अभियान, विद्यालयों और महाविद्यालयों में तरह तरह की प्रतियोगिताएं, जिनसे हम लोगों में जागरूकता ला सकें। किसी भी परिवर्तन के मूल में होते हैं बच्चे, क्योंकि आज के बच्चे कल के नागरिक, और एक नागरिक ही बनाता है देश को। बच्चों को जल संरक्षण के प्रति, प्लास्टिक मुक्त अभियान के प्रति पर्यावरण विषयक संगोष्ठियां और कार्यशालाएं चलाकर किया जाता है जागरूक। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ सामाजिक संगठन, विद्यालय, महाविद्यालय, स्थानीय समुदाय भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। इस वर्ष की थीम जलवायु कार्यवाही हमें यह संदेश देती है कि समय तेजी से निकल रहा है और अब हर व्यक्ति, हर संस्था, हर देश को पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यदि हम आज प्रकृति की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और संतुलित पृथ्वी दे सकेंगे। तो आइए इस पर्यावरण दिवस पर संकल्प लें, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, भविष्य की सुरक्षा करेंगे। चर्चा है कि अंतर्गत आज हमने बात की विश्व पर्यावरण दिवस की, तो चलिए सुन लेते हैं मुकेश की आवाज में इस गीत को। गीत के उस पार कार्यक्रम सुरभि का अगला पायदान पहल।

नमन है उस चित्रकार को जिसने रच दिया है इस दुनिया को। भरत व्यास का लिखा गीत सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में फिल्म बूंद जो बन गई मोती से, आवाजें मुकेश और साथियों की। कार्यक्रम सुरभि और सुरभि की अगली कड़ी पहल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे द नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि NMDF लोन स्कीम्स की। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे संविधान ने भी सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की बात कही है और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1994 में NMDFC की स्थापना की। बात करें अगर क्या है NMDFC, भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। अल्पसंख्यक समुदाय जिनमें शामिल हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, इन समुदायों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए NMDFC विभिन्न योजनाएं संचालित करता है। कई बार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पास व्यवसाय शुरू करने, शिक्षा प्राप्त करने या कौशल विकसित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। बैंक से ऋण प्राप्त करना भी उनके लिए कठिन हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में कम ब्याज दर पर ऋण, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है NMDFC। बात करें अगर इसके मुख्य उद्देश्यों की तो अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, शिक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना, गरीबी उन्मूलन में योगदान देना, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना शामिल है। द नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन की मुख्य योजनाओं के अंतर्गत शामिल है टर्म लोन योजना। इसके अंतर्गत छोटे व्यवसाय, दुकान, परिवहन, कृषि आधारित उद्योग और अन्य आय सृजित गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सिलाई केंद्र, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप या डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो NMDFC उसे वित्तीय सहायता प्रदान करता है। माइक्रो फाइनेंस योजना, यह योजना विशेष रूप से गरीब महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं छोटे व्यवसाय जैसे कि अगरबत्ती निर्माण, सिलाई कढ़ाई, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण आदि शुरू कर सकती हैं। शिक्षा ऋण योजना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए NMDFC शिक्षा ऋण भी उपलब्ध कराता है। यदि किसी छात्र को इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करनी है तो इस योजना का लाभ उठा सकता है। कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, रोजगार के लिए केवल डिग्री नहीं कौशल भी आवश्यक है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल, ब्यूटी वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, फैशन डिजाइनिंग, कई तरह के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आप यहां से लोन ले सकते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण में मुख्य भूमिका है NMDFC की।

एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो उसका पूरा परिवार लाभान्वित होता है। कई स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज सफल उद्यमी बन चुकी हैं और अपने परिवार की आय बढ़ाने में मजबूत योगदान दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने लिया था NMDFC से कम ब्याज दर पर ऋण। मिलता है स्वरोजगार को बढ़ावा। इस योजना के तहत युवाओं का कौशल विकास होता है, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और गरीबी उन्मूलन में भी सहायक है यह योजना। अंत में यही कहना चाहूंगी कि नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन लोन स्कीम्स केवल एक वित्तीय संस्था नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि समाज कमजोर वर्गों को सही अवसर और संसाधन देगा तो ये केवल अपना जीवन ही नहीं बदलेंगे बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। पहल के अंतर्गत आज हमने बात की द नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन लोन स्कीम्स की। घड़ी की सुइयों का इशारा, कार्यक्रम सुरभि यहीं तक। चलते चलते छोड़े चलूंगी आपको नूरान सिस्टर्स और के मोहन की आवाजों के साथ। जुड़े हुए हैं आप आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल से, जिसे आपने ट्यून किया है 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम इस गीत के उस पार। सुनते रहें, साथ बने रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू

0: घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, The news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today to dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary health care across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution upgrades, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. The Reserve Bank of India has kept interest rates unchanged.

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से

0: दीप वर्मा,
1: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
1: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
0: और डोंडी

0: बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
0: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
0: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
0: जी,
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
0: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
0: श्रोताओं, जहां तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाश गंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
0: क्या बात है!
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्य

0: कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
1: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करिए।
1: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
4: हाँ हाँ महाराज,
1: महाराज
4: बताइए।
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
4: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
5: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
6: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
7: जी महाराज, बहुत
8: महाराज की जय हो,
9: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
4: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
4: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
4: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
4: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ?

0: मुझे भी कैसे हो सकता है यार, क्या सबको नकली मिला? हाँ। तुम भी नकली, तुम
1: भी कैसे हो सकता है?
0: आया था
1: राजा, नकली हीरा दे सकता है,
2: नकली कैसे आ गया?
0: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
3: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
4: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज।
3: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
4: धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
3: क्या? और कोई शंका?
4: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
3: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
5: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
6: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
9: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं चल चल।

0: तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं।

0: उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: You are listening to the NCERT program on Akashvani Kolkata's Sancheta channel, being broadcasted on 297.6 meters corresponding to 1008 kilohertz on medium wave. The next program will be up for you in a very short while from now. Stay tuned.

0: रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े

0: कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
5: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
6: लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
7: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन संचयिता प्रचार तरंगे। एखन शुनबेन शास्त्रीय संगीत अनुष्ठाने खेयाल खेयाल परिवेशन करबेन अंजना कुशारी राग मधुबंती। शिल्पी के तबलाय सहयोगिता करेछेन समीर आचार्य हारमोनियमे सहयोगिता करेछेन हिरणमय मित्र। मधुबंती रागे খেয়াল।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হল সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল 4:59 হয়ে 48 সেকেন্ড। পরবর্তী ঘোষণা একটু পরে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: धन्यवाद दोस्त, सरस मजारू चित्र बनाई देते हैं। जरा एसपी जना लोको भाई के भेंट आप मांगे थे।
1: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन

के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल में। समय हुआ है इस वक्त 5:21 आप है इस वक्त आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल में, जैसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्स पर, और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। दोस्तों, आज की शाम उर्वशी में मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती, और आज सुरुचि में हम बात करेंगे रुगड़ा और चिल्का रोटी की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जरूर जानकारी दूंगी आपको रुगड़ा और चिल्का रोटी के बारे में। सुनते रहिए, साथ रहिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कार्यक्रम उर्वशी में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे रुगड़ा और चिल्का रोटी की। पहले बता दें आपको कि रुगड़ा क्या है। जब आप रांची के स्थानीय बाजारों में घूमेंगे तो वहाँ पर जहाँ संथाली और ओरांव आदिवासी महिलाएं अपने खेतों और रसोई के बगीचों से ताज़ी सब्जियां लाकर विक्रेताओं के रूप में सड़क पर नज़र आती है तो वहाँ पर आपको ये अजीब दिखने वाली चीज़ दिखेगी। अजीब इसलिए क्योंकि ये छोटे गोल सफ़ेद रंग के गोले होते हैं जिनका आकार अंगूर जितना होता है और दिखने में ये मशरूम जैसे होते हैं। हाँ, लेकिन इनमें कोई डंडी या

0: डंठल नहीं लगी होती है। अब आपको जब ऐसा कुछ दिखे तब आप समझ जाइएगा कि आप इसे रुगड़ा कहते हैं। रुगड़ा कहते हैं इसे स्थानीय लोग, जो झारखंड में पाया जाने वाला एक विशेष तरह का मशरूम है। झारखंड के नम जंगलों में फैले साल के पेड़ों की जड़ों के नीचे ये मिट्टी में अपने आप यानी प्राकृतिक रूप से उगते हैं और इसके सफ़ेद गोल आकार के बाहरी भाग में रबड़ जैसी सख्त परत होती है जिसके अंदर अंडे की जर्दी जैसा काला पदार्थ होता है, जो रुगड़ा को इसका एकदम खास सा स्वाद देता है। स्थानीय लोग इसे रुगड़ा की करी बनाते हैं और इसके मांस जैसे स्वाद का आनंद लेते हैं, जो बहुत कुछ सिमिलर होता है चिकन लीवर के स्वाद से, और इसकी कुरकुरी परत झींगे जैसी होती है। दरअसल रुगड़ा मानसून की शुरुआत में उगता है, जब ज़्यादातर स्थानीय लोग शाकाहारी होते हैं, और ये मांस का एक बेहतरीन विकल्प होता है। और पोषण की बात करें तो रुगड़ा में मशरूम की तुलना में प्रोटीन की मात्रा कहीं अधिक होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता। अब अगर आपने भी पहली बार रुगड़ा के बारे में सुना है तो ऐसा क्यों, जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक गीत, और आपको बता दें कि आप हैं उर्वशी में कार्यक्रम सुरुचि में, और इस वक्त मोहित चौहान और पलक मूचाल।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

दोस्तों कार्यक्रम उर्वशी में आज हम बात कर रहे हैं सुरुचि के अंतर्गत रुगड़ा और छिलका रोटी की। हालांकि रुगड़ा से ही शुरू हुई है, बता दें आपको कि ये इतनी खास डिश है, लेकिन हम ज़्यादातर लोग इसके बारे में क्यों नहीं जानते हैं। भाई, आपने शायद रुगड़ा के बारे में पहले वाकई में कभी नहीं सुना होगा, और इसका कारण भी बनता है वो ये है कि अभी तक ये एक फसल नहीं है, और जिस क्षेत्र में इसका सेवन किया जाता है वहाँ इसकी खेती भी नहीं होती है। ये दुर्लभ मशरूम बोंडू, तमार और पिथोरिया के घने साल के जंगलों में ही अपने आप उगता है, जहाँ का तापमान इसके विकास के लिए एकदम परफेक्ट है। इस क्षेत्र में भारी वर्षा यानी जुलाई महीने में लगभग इतनी बारिश होती है और अच्छी धूप मिलती है, और तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो रुगड़ा के विकास के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। स्थानीय महिलाएं जंगलों में कुछ इंच मिट्टी खोद कर इसे इकट्ठा करती है। 1 किलोग्राम रुगड़ा इकट्ठा करने में लगभग 1 घंटा लगता है, और 1 किलोग्राम रुगड़ा जो है वो कम से कम 200 से 250 रुपए में बिकता है। ये वाकई में अगर आप जाना चाहते हैं इसके सेवन के लिए, तो ज़रूर रांची में जुलाई के वक्त जाए और इसे बस पकाने के लिए अच्छी तरह से धोकर इसमें लगी मिट्टी हटा दे, और घर में पीसे हुए मसालों के साथ बस गाढ़ी गहरे रंग की करी में पकाए, तभी देखिएगा ये खाने में कितना स्वादिष्ट होता है। फिलहाल दोस्तों एक और गीत कार्यक्रम में, और इस गीत के उस पार हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ फिर से सुरुचि कार्यक्रम में, आज जहां बात करें हम रुगड़ा और छिलका रोटी की।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: समय हुआ है इस वक्त 5:39 दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, अपनी दोस्त भारती के संग। कार्यक्रम उर्वशी में सुरुचि में हमने बात की रुगड़ा की और इस वक्त है छिलका रोटी। जी हाँ, ये भी झारखंड राज्य का एक खास व्यंजन है जिसे चावल और चना दाल से बनाया जाता है। एक सरल रेसिपी होती है जिसमें बहुत कम तैयारी की आवश्यकता होती है। चावल और चने दाल को रात भर भिगोकर रखा जाता है और सुबह पीसकर पतली रोटियां बनाई जाती है। पौष्टिकता के साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की सही मात्रा भी होती है। झारखंड शैली की चावल और दाल की रोटी जिसे छिलका रोटी कहते हैं को लहसुन की चटनी या बैंगन के चोखा के साथ खाया जाता है। दोस्तों, आज कार्यक्रम सुरुचि में हम बात कर रहे हैं रुगड़ा और छिलका रोटी की। इस वक्त आप सभी के लिए एक गीत पेश है यशुदास की आवाज़ में, ये गीत फिल्म चिचोर से।

दोस्तों कार्यक्रम उर्वशी में मैं थी आपके संग आपकी दोस्त भारती और ठीक 6:10 पर आपके लिए लेकर आऊंगी फिर से कार्यक्रम वार्ता। और जाते जाते आप सभी के लिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में किंग अंकल फिल्म का ये गीत। ठीक 5:55 पर आपके साथ रहेंगे राजीव बसाक लेकर लोकल अनाउंसमेंट्स वेदर और प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों सुनते रहिए साथ रहिए आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल।

0: You're tuned to the Sanchita channel of Akashvani Kolkata, broadcasting on 297.6 meters, that is on 1008 kilohertz medium wave. Time coming up to 1800 hours. We shall now join our studios in Delhi for the news.
1: Namaskar, Akashvani Samachar ke saath main Mukesh Kumar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों

ये नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपुरती ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है इस वक्त 6:10 और 42 सेकंड। आप है आकाशवाणी कोलकाता के संचयता चैनल में। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। दोस्तों, कार्यक्रम वार्ता में मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती। आज हम वार्ता के अंतर्गत बात करेंगे प्लास्टिक मुक्त भारत की। एक गंभीर समस्या है प्लास्टिक, क्योंकि आधुनिक जीवन में ये हमारे दिनचर्या का और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। पैकेजिंग के लिए कहें, घरेलू चीज़ों को बाज़ार से लाने के लिए कहें, खिलौनों को पैक करने के लिए कहें या खिलौने बनाने के लिए कहें, बोतल और ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक के रूप में किया जाता है। हालांकि सुविधा प्रदान करने वाली यही प्लास्टिक आज पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर समस्या बन गई है। विशेष रूप से सिंगल यूज यानी एकल उपयोग प्लास्टिक ने भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किया है। इसलिए प्लास्टिक मुक्त भारत का सपना केवल एक अभियान नहीं बल्कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आवश्यक कदम भी है। दोस्तों, प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो आसानी से नष्ट नहीं होता। इसके गलने या टूटने में यानी विघटित होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्लास्टिक के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा होती है, क्योंकि भूमि और जल स्रोतों को भी ये दूषित करता है। पशु पक्षियों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है, क्योंकि कई जानवर भोजन समझकर प्लास्टिक खा लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु तक हो सकती है। जल निकासी व्यवस्था में बाधा पैदा करती है ये प्लास्टिक। नालियों और सीवरों में प्लास्टिक जमा होने से जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है और खासकर बारिश के मौसम में हम ज़्यादा ये देख पाते हैं। मानव स्वास्थ्य का भी प्लास्टिक के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक जलाने से निकलने वाली जहरीली गैसें स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती है। समुद्री जीवों को खासा नुकसान पहुँचता है। नदियों और समुद्रों में पहुंचने वाले प्लास्टिक जलीय जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत विश्व की जहां सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है, तो यहां प्लास्टिक के उपयोग पर नियंत्रण अगर नहीं किया गया तो पर्यावरणीय संकट और भी गंभीर हो जाएगा। स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भारत के निर्माण के लिए प्लास्टिक के उपयोग को कम करना बहुत जरूरी बन पड़ा है। प्लास्टिक मुक्त भारत न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा बल्कि आने वाले पीढ़ियों को भी एक

बेहतर जीवन मिलेगा। भारत सरकार ने एकल उपयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करना होगा और इसके उपयोग को बढ़ाना भी होगा। प्लास्टिक की बोतलों और कपों के स्थान पर धातु या कांच की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक कचड़े को इधर उधर फेंकने से बचाना चाहिए। रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना चाहिए और खासकर हर वर्ग में, चाहे बच्चे, बूढ़े, जवान, हर वर्ग के व्यक्तियों में इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में हर वर्ष करोड़ों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। प्लास्टिक की एक साधारण थैली को पूरी तरह नष्ट होने में लगभग 100 से 500 वर्ष तक लग सकते हैं और समुद्र में पहुंचने वाला प्लास्टिक लाखों वाटर एनिमल्स यानी जलीय जीवों के जीवन के लिए खतरा बन रहा है। प्लास्टिक के अत्यंत छोटे कण जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, अब भोजन, पानी और यहाँ तक कि मानव शरीर में भी पाए जाने लगे हैं। वाकई में ये एक खतरे की घंटी है। इसके लिए हमें बहुत जल्द अपने जीवन से प्लास्टिक के उपयोग को हटाना होगा। जैसे कि आपसे कहा गया कि मिट्टी के बर्तन और कुल्हड़ों के प्रयोग पे बढ़ावा दें, स्टील, तांबे या कांच की बोतलों का प्रयोग करें, जूट की थैलियों या कपड़े और कागज़ की थैलियों का भी प्रयोग करें। खरीदारी के समय अपना थैला स्वयं लेकर जाएं। प्लास्टिक कचड़े को इधर उधर ना फेंके और रीसाइक्लिंग योग्य वस्तुओं का प्रयोग करें। दूसरों को भी प्लास्टिक मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करें।

दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण आज पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे समाप्त करने के लिए सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक को मिलकर प्रयास करना होगा। जब हम प्लास्टिक के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाएंगे, तभी स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ भारत का निर्माण संभव होगा। प्लास्टिक मुक्त भारत केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव जीवन की सुरक्षा का संकल्प है, और ये संकल्प हर भारतीय को लेना है। आज कार्यक्रम वार्ता में हमने बात की प्लास्टिक मुक्त भारत की।

दोस्तों, कार्यक्रम वार्ता में हमने बात की प्लास्टिक मुक्त भारत की, और इस वक्त ठीक 6:30 पर कुछ मिनटों बाद ही आपसे फिर से जुड़ेंगे हम कार्यक्रम गुल गुलशन में। और गुल गुलशन एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्मों से कुछ ऐसी गजलें और कुछ ऐसी कवालियां या फिर कोई ऐसे गीत जो लोक धुनों पर आधारित हो। सुनते रहिए, साथ रहिए आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, अपनी दोस्त भारती के संग रहेंगे आप 6:30 में फिर से एक और बार कार्यक्रम गुल गुलशन में।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। मैं हूँ आपके संग आपकी दोस्त भारती लेकर कार्यक्रम गुलगुलशन। गुलगुलशन एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ हम आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्मों से कुछ ऐसे गीत जो कि लोक धुनों पर आधारित होते हैं, तो कभी हिंदी फिल्मों से गजल और कभी कवाली। तो दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे प्रीति उत्तम और राविंद्र साठे की आवाज में युग पुरुष फिल्म के इस गीत के संग।

कार्यक्रम योग पुरुष में कार्यक्रम में आपने योग पुरुष का ये गीत सुना, बंधन खुला पंछी उड़ा। इस वक्त पंकज उदास की आवाज में एक गीत सुनेंगे हम, तू जा रहा है तो। जमीर काजमी के है बोल, संगीत है अली घानी का।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: छह बजकर 43 मिनट आप सभी है इस वक्त आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल के संग और मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती। कार्यक्रम गुलगुलशन में इस वक्त कार्यक्रम में सुनेंगे अगला गीत सुखविंदर सिंह और सना मोदुती की आवाज में मोतो घोटालो। इस गीत को सुनते हैं इस वक्त।

दोस्तों, कार्यक्रम गुलगुलशन में आज हमने सुने कई तरह के गीत। जहां हमने सुने गजल, तो वहीं क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ी कई धुनों पर आधारित गीतों को भी हमने शामिल किया। कार्यक्रम में आखिरी गीत सुनेंगे रेखा भारद्वाज, राकेश पंडित और राजू सरदार की आवाज में फिल्म ओमकारा का ये गीत। ठीक शाम 7:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी कार्यक्रम दर्पण में। सुनते रहिए आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। मैं थी आपके संग आपकी दोस्त भारती। मिलूंगी आज ही फिर शाम 7:30 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मेगाहारा में आज सेमीफाइनल

0: समय हुआ है 7:31 और 40 सेकंड। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी कोलकाता के संचयता चैनल में, जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

दोस्तों आज कार्यक्रम दर्पण में एक नजर में हम बात करेंगे, आज है विश्व पर्यावरण दिवस, तो एक नजर में हम बात करेंगे वृक्ष की क्या महत्व रखते हैं हमारे जीवन में और इस खास दिन को हम जागरूकता फैलाने के लिए ही किस तरह मनाते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है। हमारे चारों ओर मौजूद वायु, जल, भूमि, वन, पशु पक्षी तथा प्राकृतिक संसाधन मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मानव जीवन का अस्तित्व स्वस्थ पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के प्रति और उसके संसाधनों के प्रति जागरूकता फैलाना इस दिवस का मूल उद्देश्य है। पर्यावरण से मिले संसाधनों की रक्षा करना और उसका संतुलित उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ पर्यावरण मनुष्य को शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। यदि पर्यावरण दूषित होगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और इसीलिए वृक्षों के प्रति एक अलग जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की है। वृक्ष प्रकृति के अमूल्य वरदान हैं और वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वायु को शुद्ध बनाते हैं। वृक्ष वर्षा कराने में सहायक भी होते हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। फूल, फल, लकड़ी, औषधियाँ, अनेक प्रकार के संसाधन भी वृक्षों से ही जहाँ प्राप्त होते हैं, तो वहीं पशु पक्षियों को आश्रय देने में भी वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज जहाँ बड़ी संख्या में जंगलों की कटाई हो रही है जिससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, तापमान में वृद्धि और जल संकट जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना आवश्यक है। तो आइए प्रण करें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम अपने पर्यावरण की वैसी ही संरक्षण करें और वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल और मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती। और इस वक्त हम आ गए हैं कार्यक्रम के दर्पण के दूसरे सेगमेंट में, जहां हम आपसे बात करते हैं विधि विधान और समाधान पर। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर। दोस्तों पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। स्वच्छ वायु, जल, भूमि तथा जैव विविधता के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और प्रदूषण के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया। ये भारत का एक व्यापक पर्यावरणीय कानून है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना है। इस अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया और यह 19 नवंबर 1986 से प्रभाव हुआ। इसे मुख्य रूप से 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद बनाया गया, जिसने पर्यावरण सुरक्षा के लिए कठोर कानूनों की आवश्यकता को उजागर किया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुछ खास उद्देश्य है इस अधिनियम में, जिसमें है पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और उसमें सुधार करना, वायु, जल और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करना, खतरनाक पदार्थों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना और पर्यावरणीय मानकों का निर्धारण।

पर्यावरण करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार प्रदान करना। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु नियम बनाने, उद्योगों के लिए प्रदूषण संबंधी मानक निर्धारित करने तथा आवश्यक होने पर किसी उद्योग या गतिविधि को प्रतिबंधित करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा निरीक्षण की व्यवस्था भी की गई है। यदि कोई व्यक्ति, संस्था या उद्योग इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना तथा कारावास का प्रावधान भी है। इससे पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। दोस्तों, आज के समय में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में पर्यावरण शासन की रीढ़ माना जाता है। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करें, वृक्षारोपण करें, जल एवं ऊर्जा का संरक्षण करें तथा प्रदूषण को कम करने में योगदान दे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन और जन सहभागिता से ही सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आज कार्यक्रम विधि विधान और समाधान में हमने बात की इसी अधिनियम जिसके बारे में हमने चर्चा की, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की। इस वक्त कार्यक्रम में आगे एक गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में।

सुन रहे होंगे आप सभी आकाशवाणी कोलकाता का संजय दा चैनल। दोस्तों, कार्यक्रम दर्पण में मैं थी आपके संग आपकी दोस्त भारती। मुलाकात होगी आपसे फिर किसी सुबह या शाम, लेकर आऊंगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम। ठीक मेरे जाते ही आप सुनेंगे 8 बजे फिल्म म्यूजिक, 8:10 पर स्पोर्ट्स न्यूज रहेंगे आपके लिए बांग्ला में, 8:15 में आपके लिए रहेगा कार्यक्रम मिक्स्ड मेलोडीज। जाते जाते आप सभी के लिए सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज में फिल्म परिंदा का ये गीत सुनते रहिए, साथ रहिए। अपनी दोस्त भारती को दीजिए यहीं पे इजाजत। शुभ रात्रि।

0: टूटी जाए। राजा महाराजा देर दोला, हे दोला हे दोला हे दोला हे दोला हे दोला हे दोला हे दोला हे दोला, एह याना याना याना हिया, एह याना याना याना हिया, एह याना याना।
1: এবারের গানটি শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, শিল্পী নিজের সুরে।

0: একটু পরেই খবর দিল্লি থেকে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে মুকেশ কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
3: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंध

0: बंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage. Pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18.

0: Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं
0: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
1: Surat सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे
0: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
1: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी हेल्थ एजुकेशन टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे
0: Prime Minister Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26, despite a global economic crisis.
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है
0: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation today released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fisheries sectors. Addressing a press conference in New Delhi today, Secretary Ministry of Statistics and Programme Implementation Saurabh Garg said, gross fixed capital formation recorded a robust growth of 8.2% in 2025-26.
2: Gross fixed capital formation, which represents the investment in the economy, that has been remarkable 8.2% in 25-26, increasing from 6.4% in 24-25. And gross fixed capital formation indicates that perhaps future growth should also be robust because it signifies the investment in the economy.
0: Speaking on the occasion, Chief Economic Advisor Dr.

0: उन्होंने आरोप लगाए कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां बलूच महिलाओं को मनमाने ढंग से हिरासत में ले रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में सम्मी बलूच ने कहा कि हबीबा पीरजान को इस वर्ष 25 मई को कराची में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लिया था, उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। सम्मी बलूच ने स्थिति को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने और मामले पर ध्यान देने की अपील की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच के दौरान दुनिया की कुछ समाचार एजेंसियों के प्रमुखों से बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि रूस अभी भी भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने पहले रूस के साथ लगभग $5 अरब का समझौता कर 5 S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदने का फैसला किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवी नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही है।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: ट्रेड एग्रीमेंट फॉरवर्ड।
0: अमेरिका से भारतीय नागरिकों के निर्वासन के मुद्दे पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस वर्ष अब तक 1076 भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया है, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 3567 थी। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच प्रवासन और लोगों की आवाजाही को लेकर बातचीत जारी है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया एक हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर सक्रिय रूप से इसका नेतृत्व कर रहा है। आज सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई बुनियादी ढांचा परियोजना की शुरुआत करने के बाद एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अकेले गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है, जो देश की हरित ऊर्जा हिस्सेदारी का एक महत्वपूर्ण 5वां हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने घोषणा की है कि उसने यूक्रेन और रूस के बीच

अस्थाई स्थानीय युद्ध विराम पर बातचीत की है ताकि यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बिजली आपूर्ति करने वाली एक महत्वपूर्ण लाइन की मरम्मत की जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि क्षेत्र में व्यापक बारूदी सुरंग हटाने के अभियान के बाद दोनों पक्षों के टेक्नीशियन द्वारा अब 750 किलो वोल्ट की क्षतिग्रस्त निप्रोवस्का बिजली लाइन की मरम्मत शुरू किए जाने की संभावना है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने चक्रवात तूफान दितवा से हुए व्यापक नुकसान के बाद भारत सरकार के अनुदान से पुनर्निर्मित उत्तरी रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। ये पुनर्निर्माण कार्य भारत द्वारा श्रीलंका के राहत कार्यों के लिए दिए गए 45 करोड़ अमरीकी डॉलर के व्यापक पुनर्निर्माण पैकेज के अंतर्गत 50 लाख अमरीकी डॉलर के भारतीय अनुदान से किया गया। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज रोम डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई एथलीट बन गए। उन्होंने कल पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 92.62 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जीत हासिल की। 23 वर्षीय पथिराज पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा भी 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले शीर्ष एशियाई भाला फेंक खिलाड़ियों में शामिल हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसद ने कहा है कि अमेरिका चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने की दिशा में प्रगति कर रहा है। अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर सदन की वेज एंड मींस समिति की सुनवाई के दौरान समिति के अध्यक्ष जेसन स्मिथ ने कहा कि अमेरिका चीन पर निर्भरता कम कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की योजना पर कड़ा विरोध जताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और वायु रक्षा प्रणाली देने की पेशकश की। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: that brings us to the end of tonight's journey, dear listeners. Hope you enjoyed these songs. From me, Rajiv Boshak, it's goodbye for now. Please stand by for the news to relate to you from our studios in Delhi.
1: That's all that matters. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत

बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे।

0: तुम्हें बढ़ावा दिया, तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
1: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
0: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात गली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
1: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
0: मेरे बारे में?
1: हाँ, रात गली यानी तुम

0: सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई।